कहना है स्टैनली टरेंटाइन का बिनाए मुनातिर फेरा पापाची उनाजा माले मुफू एरगे ऑन गिटार मिजुतु आगोना कहना है एर बों कामोरा होराया पेले Sunday sessions, tones and melodies, kimore minti. Kimore minti. Ibe gata e zalwaman. Ibe gata e akai. Haoliji. Hare kwa. Joe Sample orifela hippies on the corner.